और उदी का बीमारी अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। और बुढ़ापा भी ऐसी सूरत है, क्योंकि बुढ़ापे में बढ़ना है, कम नहीं होना। अगर ये बूढ़ा शख्स आज रोजा नहीं रख सकता कमजोरी की वजह से, आजीज है, तो फिर वो कल कजा भी नहीं कर सकेगा। अगर वो बीमार नहीं है तो बुढ़ापे के अलावा, अगर बुखार है कोई और तकलीफ है तो वो बाद में जब तंदुरुस्त तो कजा कर सकता है। तो शेस्ता फरमाते इल्ला इंकान आजिज अन सियाम, इल्ला कि कोई शख्स आजिज हो रोजा रखने से, तब तो उस पर फर्ज नहीं कि वो कजा करे। ठीक, तो क्या करेगा ऐसा शख्स? मिस्किन को खाना खिलाएगा, बारकल्लाह फीक, रोजाना एक रोजे के बदले एक मिस्किन को खाना खिलाएगा। और सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जब बूढ़े हुए और रोजा ना रख सके, तो वो हर दिन के बदले में एक मिस्किन को खाना खिलाया करते थे। शेख़ फरमाते हैं तखीर व कवा, ये तो हमने जाने के कवा, सॉरी उसे एक चीज और रह गई, वाजिब हम जान चुके हैं। वाजिब के बाद शेख़ फरमाते हैं वही उस्तहब, उसको अंडरलाइन करें, वाजिब अलग हो गए, अब उस्तहब और फिर जायज, ये तरतीब होती है हमेशा। किताब पर जरा गौर करें आप, उसमें जो अहकाम फिकहिया हैं, जो अहकाम तकलीफिया हैं, सारे इस तरीके से बयान किए गए हैं। क्योंकि फिकह की किताब, इसमें हम यही ना जाने वाजिब मुस्तहब और मुजायज की आए तो फिर जानेंगे क्या हम? तो वाजिब तो जान चुके हम लोग, अब मुस्तहब क्या? शेसा फरमाते वो उस्तहब अन युबादिर इला कवा इस्सौम, कि रोजे की कजा में जल्दी करे, मुबादर यानी जल्दी करना, पहली फुर्सत में कजा कर लेना। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि कभी भी मौत आ सकती है। अगर कोई शख्स मर्ज की वजह से रोजा नहीं रखता बाद में कजा करने के लिए, अब रमजान के बाद वो तंदुरुस्त हो गया, तो उसे चाहिए कि मुबादरा करे जल्दी के रोजे की कजा में, जैसे उसके पास वक्त हो। और जो छह शवाल के रोजे हैं वो पहले रख ले, रमजान के रोजे पहले कजा कर ले, और फिर छह रोजे जो शवाल के हैं वो अपने मुकम्मल करें। क्योंकि उलमा का एक यह कौल है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह फरमान, जिसे रमजान का रोजा रखा और उसके बाद शव्वाल के महीने के छह रोजे रखे, तो उसने गोया पूरे साल के रोजे रख लिए, सयाम दहर। जो तब हो सकता है जब रमजान के रोजे मुकम्मल कर ले। अगर आपके कजा दो या तीन दिन है तो आप पहले दो तीन दिन के कजा कर लें, इसमें जल्दी भी हो जाएगी, मुस्तहब आप अमल कर लेंगे और जो सवाब है पूरे साल वो भी आप ले लेंगे। हाँ, अगर बाज औरतों को उधर हैज की वजह से या निफास की वजह से ज्यादा दिन इफ्तारी करनी पड़े, यानी 15 दिन या उससे ज्यादा, तब मुश्किल हो जाता है कि 15 दिन कजा करें फिर 6 दिन रोजा, फिर रमजान के साथ दूसरा महीना भी उनके लिए हो जाता है। अगर यह सूरत हाल है तब वो 6 शवाल के रोजे पहले रख ले। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, करीम है, रहीम है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से इंशाल्लाह ये इनाम और एहसान और ये अजर सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। लेकिन यहां पर एक वजह है कि वो कमजोर है बेचारी पहले से, और फिर उसने रमजान के रोजे 15 दिन रखे हैं, और फिर अभी मुसलसल फिर 20 दिन रोजा रखे, उसके लिए मुश्किल हो जाती है। औरत वैसे भी कमजोर होती है, लेकिन उनकी बात करूं जो वो मर्द हजरात या वो औरतें जिनके कजा 2 या 4 दिन है। अब 2 या 4 दिन और 20 दिन बराबर तो नहीं है ना, जिसके 2 या 4 दिन है वो पहले कजा कर ले रमजान के रोजे, और बाद में जो है वो 6 रोजे शवाल के रख ले। ऐसा फरमाते हैं وان تكون الايام متتابعه، اور یہ بھی مستحب ہے کہ ایام جو ہے قضاء کے متتابعہ ہوں، مسلسل ہوں، یعنی بیچ میں کوئی وقفہ یا گیپ نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ مستحب۔ اب بات مستحبات کی ہو رہی ہے، پہلا مستحب کیا ہے کہ قضاء میں جلدی، دوسرا مستحب کیا ہے کہ بغیر گیپ کے مسلسل روزے رکھیں۔ اذا كان عليه اكثر من يوم، اب تسلسل کب ہوگا؟ جب ایک دن سے زیادہ قضا ہوگی نا، جب ایک دن قضا ہے پھر کیا تسلسل کی ضرورت ہے؟ اچھا، کیا صفحہ فرماتے ہیں ویجوز تفریقها، ویجوز تفریقها، یہاں پر آپ انڈر لائن کریں یجوز۔ اب واجب، مستحب اور جائز، تیسرے حکم ہے جائز۔ جائز کیا ہے؟ کہ آپ مسلسل نہ رکھیں، بیچ میں گیپ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ مستحب تو وہ تھا، جائز یہ ہے۔ اگر آپ کے لیے دقت ہے، آپ نے جاب پہ بھی جانا مشکل ہے آپ کے لیے، آپ مسلسل 7 دن روزے یا 5 دن روزے نہیں رکھ سکتے، تو آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں، یا آپ صرف جمعرات کو روزہ رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ ایک ہی دن بھی کر سکتے ہیں، پورے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر و قضاء، یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے، تو تاخیر کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں
تأخير القضاء للمفطر أن يؤخر القضاء إلى